उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाह फिजा में, अलविदा कहती थी या पास बुलाती थी उसे।

0: हेलो
1: हेलो मैडम, मैं ललिता बोलती हूँ और मुझे नहीं गाना चाहिए। फूल तुम्हें भेजा हूँ, कसमें फूल नहीं मेरा दिल।
0: ठीक है, सुनवा देंगे।
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: नमस्कार, रेडियो विश्वास मंत्र बोलते बोला।
0: मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, बोलिए।
0: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ और ड्यूटी परेड में हूँ। आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ और दिशा मृत्यु मनन के साथ में जल्दी से अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है प्रीतमा और गीत बोल है कोई रोको ना दीवानी को मन मचल रहा, गायक किशोर कुमार, ये राकेश रोशन, जितेंद्र और नीतू सिंह का फिल्म गाना है। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूर्व भारत श्रोता को, हेलो एकता रेडियो फिल्माइज ग्रुप से जुड़े श्रोताओं को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को और रेडियो विश्वास में जुड़े सभी लोगों को, पूरे भारत का श्रोता को डिडेक्ट कर रहा हूँ। इसका प्रसारण रविवार को 5 बजे होगा, तो जरूर सुना दीजिएगा सर। फोन सामने की धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, आपका भी दिन शुभ रहे और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: फोन सामने किए सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: please. Thank you. Friend, अभी हमने आपके सामने कुछ आइटम पेश किए और अब हम आज रात का आखिरी और सरप्राइज आइटम पेश करेंगे. दोस्तों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हसीन यादें बनकर रह जाते हैं. इसी तरह आज की रात को एक हसीन याद बनाने के लिए हम इस आइटम को एक मुशायरे के रूप में पेश करेंगे. इस मुशायरे का मजमून होगा मोहब्बत.
1: किससे?
2: वो किसका भी हो जाए, होने तो दो.
0: अभी मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत के नाम पर सिर्फ शेर व शायरी होगी. लड़के और लड़कियों की तरफ से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश होगा. लड़कों की तरफ से मिस्टर महेश कपूर. और लड़कियों की तरफ से मिस मीना खोसला. मिस मीना एंड मिस महेश ऑन द स्टेज प्लीज.
3: देखिए आज झटक कर
4: आज आप समझ रही
3: हैं.

सागर भंवर में कश्तियां उतारते चले गए जो जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए कदम कदम पे हम तुम्हें उतारते

0: हेलो
1: हेलो मैडम, मैं ललिता बोलती हूँ और मुझे नहीं गाना चाहिए। फूल तुम्हें भेजा हूँ, कसमें फूल नहीं भेजा दे।
0: ठीक है, सुनवा देंगे।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: नमस्कार। रेडियो विश्वास महतो बोलते, बोला।
0: मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, बोलिए।
0: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ और ड्यूटी पीरियड में हूँ। आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ और दिशा मृत्यु मनन के साथ में जल्दी से अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है प्रीतमा और गीत बोल है कोई रोको ना दीवानी को मन मचल रहा, गायक किशोर कुमार, ये राकेश रोशन, जितेंद्र और नीतीश सिंह का फिल्म का गाना है। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूर्व भारत श्रोता को, हेलो एकता रेडियो फिल्माज ग्रुप से जुड़े श्रोताओं को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को और रेडियो विश्वास से जुड़े सभी लोगों को, पूरे भारत के श्रोता को डिडेक्ट कराऊँ। इसका प्रसारण रविवार को 5 बजे होगा, तो जरूर सुना दीजिएगा सर। पहुंचाने के धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, आपका भी दिन शुभ रहे और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पहुंचाने के लिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

कभी हुआ है अकेली सी शाम में, धुंधे से एक चिराग के चेहरे के पास पास सरगोशियां सी ढूंढते हैं जब तुम।

के जाने के बाद भी देर तक टक्का रहता है। तुमको छोड़े देर हुई है, आंसू

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक दिनक दिन धाक दिनक दिन ताक दिनक दिन धाक
1: आंख मिल जई है सजनिया से।

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अजी ये क्या कह रही हैं आप?
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।
0: नहीं गा।